गंगो नाओ सहगला रामा धर्मा उदा पाई जट्टू पट्टू दे वित्या फिरना सूद वड्डा सत भाई भोलू पट्टू जानियन सनमुख ते वाड़ी सुखदाई डल्ला भागी भगत है जापू निवला गुर शरणाई मूला सूजी धावणे चंदू चौजड़ सेव कमाई

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंवर प्रसाद जप

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वार या न जावा एक वार जो तुद भावै साई पलीकार तू सदा सलाम निरंकार असंख मूर्खंद कोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहि जोर असंगल वढ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख अमलेश मलक भख काहि असंख निंदक सर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार वो अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण

नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अधुर दर्दं अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोश पारं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयान अशेदी अपेदी नाम अशेदी अपेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्त स्थामं तेरा जोर चाचरी शन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं उजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्य नमस्त्वं नरेनाथे नमस्त्वं परमार्थे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे नमो साजे नमो साहे नमो मामाहे नमो गीत गीते नमो प्री प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो

खेलन खेल खेलन खेलन खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक दे भेव न जाने जे बेद और कदेव राव रूप रंग न जात पात सो जान के जे तात मात न जात जा कर जन मन बहीन चक्कर बकर फिर चतर

वर्ण है कि सर्वापर्ण के जगदंकृति है कि शतरंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपम रूप है कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कैदीन है कि रोजी रजा कर नहीं मेरे वाकर

कि कर्मं क्रीम है कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पाहुन है कि सर्वत्र देशा है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देशा है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज एक सर्वत्र राज एक सर्वत्र सोखा एक सर्वत्र पोखा एक सर्वत्र त्राण एक सर्वत्र प्राण एक सर्वत्र देशा एक सर्वत्र पेशा एक सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानी एक सर्वत्र जाप्य एक सर्वत्र थाप्य एक सर्वत्र पान एक सर्वत्र मान एक सर्वत्र इंद्र एक सर्वत्र चंद्र एक सर्वं कलिमे के परम भहीमे के आकल अलामे के स्वायब कलामे के हुस्नुल वजू है

अनास हैं, उदास हैं, अंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अनेक हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावलशन त्वय प्रसाद।

सदा सचदानंद सतरम प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्त निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमुल रही में।

पशु को मृतान को पूजन तहायो पूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सभी जग

बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव जू अप्तरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज, ब्रह्मा जूथी ओ जमन काल, सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जनी आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

जाबे उद कर करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब या कर कर तो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ देते बदना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार है।

सोइया। पाए गहे जपते तुमरे तपते को माकतरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

0: ठाकुर मख कूट बैपूर नानक खाने बेनती तुद बाद पूरो पूर महला पहला
1: सच तम पर जानिए जज दे सचा होए कूड की मल त्रै तन करे हशा तोए सच तम पर जानिए जा सच तरे प्यार नाऊ सुन मन रहसियता पाए मोख द्वार।

पिंदरा बन में रंकिया। कल में वेद थर्मन हुआ नाम खुदाई लो बया, नील वस्त्रले कपड़े पैरे, तुरख उठानी मलकिया, चारे वेद हुए सजे यार पड़े

साहेब जीओ दंडौत वंदना अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ जिता समुंद सागर नीर

तीर्थ वर्त वरदान कर मन में धरै गुमान नानक ने फल जात तेह ज्यों कुंचरी स्नान।

दुख दारू सुख रूप भया जा सुख साम ना हुई तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवाले जिन की ती सो पार पया।